मुझे मौका चाहे गीत सुबेत पौध आई को ना अमका सर्वा की ना सोया मन बोगले आऊ चिंता आता मुखले पौध जाऊ नसा गिटार चेतार चाफरा डिकोस्ता हजे उतरा के हेरी कोजारियो आने ताड़ो बोसेलो गिटार चेतारे तकास तो समर्पिता मुल्ले बरे हे सुबेत पौध आता तुमचे कते प्रसार जतले।

0: साथ और भाई अब खड़ा हो तो मेरा भी तरपास ताकि वाला हम का एक भाई रे उन्हों खाने के भाई देवाले आ रहे हैं तले संगठना जाए जी हो महिला उन्हों तो कितने आता एग्जांपल दे उन्हों का ऑनलाइन शॉपिंग नहीं ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं कलेंडर उन दिनों से उनसे एक लाइव एक्सपीरियंस कर लो खाने के तना जाऊं चे एक सेटिस्फेक्शन ये तो ऑनलाइन शॉपिंग कर मैं
1: ऑनलाइन अगर लो लोटा मेरे को सुनो सुनो सुनो रोया रोई दे खड़ी आने के
0: ऊपर
1: तू उस अंदर लो लोटा में तो बहुत दस्त है जब पर कुना चाहे
0: पर कुना चाहे
1: आई सेम तो कपड़ों को पर
0: कुना ने कार्य आ गया पड़ोन पर को उपरान कार्य आ गया जो वैसे जो चे कार्य आ गया जस सुपर माने ये वो संगठन नहीं दशन श्राम का जो पुराम करे गर्ज ना आता जीवा जाना जो तुम पुराम करे गर्ज ना कलम राम का पूरा आता मिलता
1: दुनिया मिट्टी में है
0: हाँ दुनिया हम चाहता तो था सा मैं हमें तेरी गले तो सजम चिंतन पूरा गेले अपना तो पिकल ताकि पसंद हो हमें हम चे शेयर करते ना पिकल ताकि ओह ऐसे हम का एक्सपोज़र मिलता तो हम का आज पे गेले हम आज पे हम चे शेयर के लिए और एक्टिविटी संसंचन बनी बग गए थे लिया ना मुख्य तेरा हमने ते दर्जे पट्टा पट्टा
1: ये मुझे मतलब स्टार्ट करने को चाह तो हम चाह पागल नहीं चाहिए तो नहीं सुना चाह दाएं से ज़्यादा वाला रखते बेस्ट यूनिट मिलने नाम कर गए दाएं मतलब 124 के जगह पर इतना मतलब कुछ लोग और चला नहीं इधर मैं ते किसान कम है पुरों से मुझे दौड़े मुकर पुरों से करना है नहीं 20-25 जना सर तो एक कोट हम चाहे मोदी तो एक कोट कृषि समाज मोदे तो एक कोट समाज क्या अक्रिस का बोना मोदे आई स्वयं को कित करता है ना तो का समाज और करता तो का संसार और करता तो ब्लेम चलर नहीं करता बोलता है शेम करता ना आई स्वयं मत आओ ना पढ़ाई की पार्ट जाए ना वैसे सब हम पढ़ाई की पार्ट जाए ना कंजे संगठन नंद पार्ट जाए ना बोरन सता पार्ट गांव चे हम चेता मुझे तो वही ठीक था ना नॉट बिकॉज ऑफ दैट संगठन में समझ इस नशीला
0: वस्तु से ना ये मंटा थी कि ऐसे हम गिलर का शुक्र टाइम मिलना हमका दूसरे एक्टिविटीज का टाइम मिलना ऐसे हम आसुन रैंक कर लेके थिंग देना सर ऐसे हम तो अनु शिक्षा दत्त उसने मट्टा पाउली प्लीज अना सर
1: दिस इज फॉर समवन यस सर
0: सर सर
1: ओके प्लीज अना समन का जो ऐसा ये तो का ऐसे हम जाई ता छे मैं जाई के दाना ने तुम का नेम तो आस्ताना हम मुंह का बुढ़िया हम से हम मान से अदर कंदलार में हम ये दिखा काले में दूर दिखा दे मन में रहे अब तो क्या दिस था वाइस से सच्चे दिस था मन तर बोले थोड़ा दाना ने तो ते के कलम तक कोंटा को मुंह दिला दूध दिला उदाहरण दिला हम लोग जन वालों के लिए हम लोग हमारा कान मन से हम लोग तो सर दियो ना निमाने आई का तो सेंट्रल में चलिया मुझे बोला चाहिए इस बंदा हम तो